सुप्रभात। एफएम 103 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। आज रविवार है। शक संबत 1948 के ज्येष्ठ मास की 17वीं तिथि, तदनुसार 7 जून 2026। अभी हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 हुए हैं। आप सबों का आज का दिन मंगलमय हो, इसी कामनाओं के साथ आरंभ होती है हमारी प्रातः।

0: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से, सुबह के 6 बजने वाले हैं। शामिल होते हैं अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के प्रसारण सेवा में, जहां से आप सुनिएगा हिंदी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक अनिश्चितताओं के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में कल विकसित भारत के लिए युवा माय भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को यह मंच प्रदान किया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर आधारित हैं।
2: Collaborate closely to maintain security along and uniquely open border.
3: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया है। गृह मंत्री की अध्यक्षता में बीएसएफ के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया। श्री शाह ने पिछले 5 वर्षों के जमीन से जुड़े दस्तावेजों की जांच कराने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल रोजगार के अवसरों में कमी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त रहा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक, अग्रिम पहुंच या बिक्री की अफवाहों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा कि ये विद्यार्थियों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एनटीए ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में ना आने की सलाह दी है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। न्यू चंडीगढ़ में कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। केएल राहुल ने भी 100 रन की पारी खेली। दूसरे दिन का खेल आज सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। और एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई कर चुके सागर जगलान और किशोर काजल धोचक ने अपने अपने वर्गों में स्वर्ण पदक जीतकर मंगोलिया में आयोजित उलान बतोर ओपन कुश्ती टूर्नामेंट में भारत को 6 और पदक दिलाए। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान में 2 दिन तक तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनाने जा रहे हैं सुनीता अग्रवाल की पूर्व प्रसारित वार्ता। विषय है कंपोस्ट बनाने की विधि।
4: खेती की बातें कार्यक्रम में श्रोताओं, आज हम बातें करेंगे कंपोस्ट खाद के लाभ पर। श्रोताओं, कंपोस्ट खाद फसल व पौधे के पोषक तत्वों में उच्च जैविक उर्वरता संचार करता है, जो मिट्टी की भौतिक विशेषताओं में सुधार लाता है, खेत में जैव अवशिष्ट को कम करता है और रोग जनितों को खत्म करता है। इस तरह कंपोस्ट खाद जैविक खेती का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कंपोस्ट के लिए उस स्थान का चयन करें जहां हवा, धूप और पानी का प्रभाव ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि संतुलित मात्रा में हो, और मिश्रण या कचरा ना तो ज़्यादा गीला होना चाहिए और ना ही सूखा होना चाहिए। खाद बनाने के लिए जगह का चयन जमीन के ऊपर या गड्ढे के रूप में दोनों तरह से किया जा सकता है। अगर जमीन के ऊपर कर रहे हैं तो उस जगह से खरपतवार को साफ कर देना चाहिए और मिट्टी के कुछ सेंटीमीटर परत बनाएं, उसमें पानी से गीला करके उस पर कचरा डालना चाहिए। इसी तरह से यदि गड्ढे का उपयोग कर रहे हैं तो वहाँ मिट्टी की परत बनाएं और पानी का छिड़काव करें। यदि हो सके तो अधिक नाइट्रोजन के लिए मिश्रण में पौधे व फसल के अवशेषों को ज़्यादा डालें, जिससे नाइट्रोजन की ज़्यादा मात्रा मिल सकेगी। मिश्रण को डालते समय ध्यान दें कि उसमें कोई खाली स्थान नहीं रहना चाहिए। अच्छी तरह से दबाकर गड्ढे को भरना चाहिए और ऊपर गोबर का लेप लगा देना चाहिए। इसके बाद उस पर 15 सेंटीमीटर मिट्टी की परत बना देना चाहिए। कचरे को नमी युक्त करके गड्ढे में डालना चाहिए और 4 से 5 महीने के लिए इसे छोड़ देना चाहिए। उसके बाद जो कंपोस्ट खाद तैयार होता है वो आवश्यक पोषक तत्वों से परिपूर्ण होता है। कंपोस्ट खाद प्रभावी तब होता है जब में ऐसी परिस्थितियों में बनाया जाता है जो सूक्ष्म जीवों के नाम पर मिट्टी में छोटे छोटे जीवों का विकास का समर्थन करते हैं। ये बैक्टीरिया और कवक होते हैं। सूक्ष्म जीवों को और पौधे और पशुओं के अवशिष्ट पदार्थों को तोड़ने के लिए आवश्यक होता है। पौधे और पशु के कचरे के टूटने के दौरान गर्मी का उत्पादन होता है और कुछ दिनों के बाद तैयार कंपोस्ट का ढेर गर्म हो जाता है। जब उसे खोला जाता है तो उसमें भाप दिखाई देता है। कचरे की सामग्री के रूप में विघटित होने पर ऐसे पदार्थों में पोषक तत्व कुछ होते हैं जिनका उपयोग फसल और पौधे में किया जा सकता है। कंपोस्ट खाद को फसल बुआई से उसे 4 सप्ताह पहले भी नमी युक्त खेत में डालना चाहिए और उसको किसी भी यंत्र से मिट्टी में अच्छी तरह से मिला देना चाहिए, ताकि पोषक तत्व भूमि में अच्छी तरीके से प्रगतिशील हो सके या फसल के

0: अवशेषों, गोबर, घास और अन्य घरेलू कचरे से बनती है, जो किसानों को अपने खेतों से ही मिल जाया करती है। पौधे इसके पोषक तत्वों को अधिक टूटने की बजाय सीधे ग्रहण कर लेते हैं। मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है, जिससे फसल के समर्थन मिलता है और पानी की बचत भी होती है। पर्यावरण पर दूषित प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि पर्यावरण प्रदूषण से भी छुटकारा मिलता है। इस प्रकार से देखा जाए तो कंपोस्ट खाद का प्रयोग करना सबों के हित के लिए कार्य है, किसानों के लिए, मानव सेहत के लिए और साथ ही पर्यावरण के लिए। तो फिर किसान भाइयों को इसका प्रयोग जरूर करना चाहिए, ताकि इसका लाभ सबों को मिल सके। और आज की जानकारी यही।
1: खेती की बातें कार्यक्रम में भी आप सुन रहे थे सुनीता अग्रवाल की पूर्व प्रसारित वार्ता, विषय था कंपोस्ट खाद बनाने की विधि। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से, सुनते हैं श्री राम चरित मानस गान।

प्रयाग से चित्रकूट के मार्ग में श्री राम, सीता और लक्ष्मण को ग्राम तथा वनवासियों से हृदय स्पर्शी स्नेह प्राप्त हुआ। ग्राम वधुओं ने सीता जी के चरण छूकर उनकी मंगल कामना की, उन्हें आशीष दिया कि जब तक पृथ्वी कायम है उनका सुहाग बना रहे, वे पार्वती की भांति पति का प्रेम प्राप्त करें और वन से लौटते हुए इसी मार्ग से जाएं। लक्ष्मण ने जब विनीत भाव से आगे का मार्ग पूछा तो ग्रामवासियों की आंखों में आंसू उमड़ आए। कर्म की गति कोई नहीं जान सका है, ऐसा मानकर वनवासियों ने उन्हें सुगम मार्ग बता दिया। स्नेह सिक्त वचन से श्री राम ने उन्हें उनके घरों को वापस लौटाया। लौटते हुए स्त्री पुरुषों को ये विषाद है कि विधाता के सभी काम उल्टे होते हैं। यदि उसे इन्हें वनवास ही देना था तो व्यर्थ ही भोग विलास के साधन बनाए। व्यथित ग्रामवासी विधाता की करनी का विश्लेषण करते हैं। किसी को लगता है कि ये ब्रह्मा के बनाए न होकर अपने आप प्रकट हुए हैं। कोई कहता है कि ब्रह्मा इनका अनुपम रूप देखकर इन पर मुग्ध हो गया होगा और इन्हीं की छवि में स्त्री पुरुष बनाने लगा होगा, किंतु बहुत यत्न करके भी अपनी रचना को इन जैसा सुंदर नहीं बना सका होगा, तो ईर्ष्यावश इन्हें वन में छिपाने की योजना बना ली।

आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान FM 103 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। सुनते हैं आज का चिंतन। शीर्षक है अहंकार। संकलन और वाचन स्वर है निर्मला तिवारी का।

0: अहंकार शब्द की उत्पत्ति संस्कृत में अहम अर्थात मैं से हुई है। मैं में केंद्रित होने वाला व्यक्ति अहंकार रूपी रोगों से ग्रसित हो जाता है। छोटा सा बच्चा जब वह जन्म लेता है तो उसके भीतर किसी तरह का कोई भी अहंकार नहीं होता, निश्चल होता है उसका मन। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, वह बड़ा होता है, उसके अंदर भी प्रतिस्पर्धा का भाव जगने लगता है, कुछ अलग करने की, दूसरों से अलग दिखने की, और धीरे धीरे उसके अंदर भी अपने भाई बहनों के प्रति प्रतिस्पर्धा के भाव आ जाते हैं, यानी उसके अंदर भी अहंकार का बीज पनपने लगता है। शुरू में तो यह भाव आवेग हमारे वश में होता है, पर समय बीतने पर यह इतना बलशाली हो जाता है कि हम उसके अधीन हो जाते हैं। हमारे सारे कार्यकलाप ही अहंकार पूर्ति से प्रेरित होने लगते हैं। अहंकार वह पात्र बन जाता है जो कभी भी भरने का नाम ही नहीं लेता। धन, पद, प्रतिष्ठा, यश पाकर भी हम हमेशा अतृप्त रह जाते हैं। जीवन उस मरुस्थल की तरह, रेगिस्तान की तरह बन जाता है जिसमें अहंकार तृप्ति की प्यास मृग तृष्णा की जैसे बन जाती है। अहंकार से मानव रोगों से ग्रसित होने लगता है। अहंकार के बलवती होने से जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण और जटिल हो जाता है। अहंकार के मद में हम और अधिक गहरे डूबते चले जाते हैं। हमारे अंदर ईर्ष्या, लोभ, क्रोध, ये सब लक्षण उभरने लगते हैं जो अहंकार के कारण होते हैं। अहंकार के चक्रव्यूह को तोड़ पाना आसान नहीं है। उसके लिए सबसे पहले मन में नम्रता, समर्पण और त्याग को अपनाना होगा, और जब हम इसे अपनाएंगे तभी हमारे अंदर का अहंकार मिटेगा। क्योंकि यह अहंकार हमारे मन मस्तिष्क में छुपा हुआ होता है, इसलिए हमें अपने मन मस्तिष्क को साफ रखना होगा, किसी के प्रति किसी प्रकार का द्वेष नहीं पालना होगा, तभी जाकर हमारे अंदर का अहंकार मिटेगा। अहंकार से छुटकारा पाने के लिए हम अपने इस सुंदर शरीर से, जो कि सांसारिक है, और ये पद प्रतिष्ठा जो कि क्षण भंगुर है, इससे हम बच कर रहें। यानी जब हमारे अंदर ये भाव आ जाएगा कि ये सब तो बस दिखावे के लिए ही है, तो हमारे अंदर अहंकार नहीं पनप पाएगा। अंतर मन की आत्मा से जो व्यक्ति जुड़ जाता है उसके अंदर अहंकार नहीं जम हो पाता है। अहंकार का अंधेरा अपने आप छटने लगता है यदि हम उस प्रकाश को महसूस कर लें, लोगों के प्रति ईर्ष्या को दूर कर दें।
1: आप सुन रहे थे हमारा आज का चिंतन। श्रोताओं, हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से। अब आइए सुनते हैं भक्ति संगीत पर आधारित हमारा कार्यक्रम आराधना।

श्रोताओं, आराधना कार्यक्रम में हम आपको सुना रहे थे भक्ति गीत, कलाकार थे अनूप जलोटा, मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर और मन्ना डे। तो इसी के साथ ही हमारा आज का ये कार्यक्रम अभी ही संपन्न होता है।

0: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आइए सुनते हैं डॉक्टर राजीव कुमार, समा करेंगे डॉक्टर त्रिभुवन प्रसाद वर्णवाल से ली गई बातचीत। विषय है बढ़ता स्क्रीन टाइमिंग और आंखों पर इसका दुष्प्रभाव। इनसे बातचीत कर रहे हैं संजीव कुमार लाल।
1: आज के समय की यदि हम बात करें तो जमाना मोबाइल का है। हर समय हम मोबाइल के सहारे रहते हैं, सर्फिंग करते हैं और ज़्यादातर समय हमारा मोबाइल पर निकलता है। ज़्यादा समय तक यदि हम मोबाइल देखते हैं तो आँखों में बहुत सारी परेशानियाँ होना शुरू हो जाती है। और ख़ासकर हम बात करें छोटे छोटे बच्चों में, जिन्हें मोबाइल की लत लगी हुई है, वो मोबाइल देखते रहते हैं, गेम खेलते रहते हैं, उनमें भी आँखों की विकृतियाँ उत्पन्न होने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। तो लगातार स्क्रीन टाइमिंग से क्या समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, आंखों पर क्या प्रभाव पड़ता है और खासकर बच्चों पर हम किन किन बातों का ध्यान रखें, इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे इस कार्यक्रम में आमंत्रित हैं वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर त्रिभुवन प्रसाद बर्णवाल। डॉक्टर साहब स्वागत।
2: नमस्कार
1: डॉक्टर साहब। आए दिन हर समय लोग मोबाइल से चिपके रहते हैं, आँखों में जलन, माथे में दर्द और भी अनेक समस्याएँ उत्पन्न होने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं।
2: देखिए, एक बात तो है कि अभी के समय में बिना मोबाइल का आप कल्पना नहीं कर सकते। ये बच्चे से लेके बूढ़े तक सबके लिए सम्मिलित है, लेकिन मोबाइल के साथ साथ इसकी जो खामियां हैं वो भी आपके सामने है और हर घर में सभी लोग इससे परेशान हैं। इसका मुख्य कारण है आप आँख को बिना पलक झपकाए एक टक देखते हैं, उसके कारण कॉर्निया ड्राई होता है और मेन कारण कॉर्निया ड्राई होना ही है बाकी आँखों के लक्षण का। तो अगर हम आँख को ड्राई होने से बचा सकते हैं तो फिर मोबाइल कोई हानि की चीज़ नहीं है, लेकिन अगर हम नहीं बचा पाते हैं और लगातार स्क्रीन टाइम पौन घंटे एक घंटे या उससे अधिक होता है तो उसकी जो भी खामियाँ हैं उसे हम पाते हैं, देखते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, शुरू में तो लगता है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन धुंधलापन बढ़ने लगता है। अगर हम उसका पावर टेस्ट करते हैं तो देखते हैं उसका विजन 6x6 नॉर्मल विजन है, लेकिन उसे शिकायत है कि हमें धुंधलापन हो रहा है। इसका अगर आप हिस्ट्री और लेंगे तो दो बातें मिलती हैं। एक तो मिलता है कि वह व्यक्ति या बच्चा मोबाइल का उपयोग अधिक कर रहा है और दूसरा उसका खान पान प्रॉपर नहीं है। ये दोनों खामियां हैं, खान पान प्रॉपर नहीं होना और मोबाइल का देखना, ये दोनों उस आँख की परेशानी का मुख्य कारण है। और छोटे बच्चों में तो इसका और अधिक प्रभाव पड़ता है और उसी कारण लगता है माँ बाप को कि आँख पे पावर आ गया है। और हमारी प्रैक्टिस में हम पाते हैं कि बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चे को लेकर आते हैं दिखाने के लिए, उन्हें लगता है कि डॉक्टर साहब देखेंगे, चश्मा ली

0: ऑफिशियल में आजकल मैक्सिमम लोग सब नेट से ही काम होता है, बैंक मोबाइल और लैपटॉप से ही काम होता है। तो ये प्रैक्टिकल है कि उन्हें काम करना है, लेकिन ये भी प्रैक्टिकल है कि वो काम अगर लगातार कर रहे हैं बिना प्रिकॉशन लिए, तो उनका लाइफ स्कैन, आई का लाइफ स्कैन काफ़ी हद तक कम जाएगा। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि हर 45-50 मिनट में वो 2-5 मिनट गैप करें, उस गैप में आप स्क्रीन से अपने आप को हटाएं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे आप देहात में कहते हैं आँख मारना, तो दैट इज कॉल्ड ब्लिंकिंग। तो दैट मीन्स कि आप गेजिंग या टक एक टक ताकना, उसे आपको अवॉइड करना है। आप कोशिश करिए कि ब्लिंक करते रहिए बीच में, तो कॉर्निया ड्राई नहीं होगा और आपको आँख में पेन नहीं होगा। दूसरी और इम्पॉर्टेंट है कि जब बच्चों से हम पूछते हैं कि उसका विजन नॉर्मल है, उसके बाद भी दिख नहीं रहा है, तो अगला क्वेश्चन मुझे ये रहता है कि क्या खा के आए हो, तो उसके गार्जियन का भी हंसता है कि बच्चा भी हंसता है, और नहीं बोल पाता है तो माँ को देखता है क्या खाए हैं नहीं पता है। तो जब और डिटेल में जाने की कोशिश करते हैं, जब उसको ये समझाते हैं कि खाना आपका उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना चश्मा टेस्ट करवाना, तब पाते हैं कि या तो चाय रोटी खा कर आया है, या पास्ता खा कर आया है, या फास्ट फूड खा कर आया है, और ये लगातार खाता रहता है। तो बीच में हमारी सलाह उन लोग की रहती है कि भाई ठीक है, तुम सब खाओ, मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो भी फल पसंद है उसको खाओ, जो भी सब्जियां पसंद है उसको खाओ, और अगर नहीं पसंद है तो माँ को बोलते हैं कि भैया गाजर टमाटर और इस टाइप का जो भी है उसको पीस के पिला दो बच्चे को, कोई उपाय नहीं है उसका। और कई बार ये नौबत बच्चे तैयार नहीं होता है, लेकिन हम मानते हैं कि अभी बच्चे इतने तेज हैं कि प्रॉपर काउंसलिंग अगर उनका किया जाए तो मोस्ट ऑफ दी पर्सन तैयार हो जाते हैं बच्चे। लेकिन काउंसलिंग करने की आवश्यकता है आज के समय, काउंसलिंग ना डॉक्टर के पास समय है ना माँ बाप के पास समय है। उन्हें भी लगता है कि आसानी से मोबाइल दे दो, बच्चा अपना इंगेज हो गया, अब अपना काम करते रहो। तो ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, जो 6 महीना साल 2 साल 3 साल के बाद आपको दिखाई पड़ने लगता है। हमारी अपनी मान्यता है और अनुभव है कि सारे ऑफिशियल्स स्टाफ से काम चाहते हैं। आप अपना काम करते रहिए, अगर 5 मिनट 7 मिनट इधर करते हैं ना, कहीं कोई पूछने नहीं जा रहा है। ये प्रॉब्लम तब होता है जब आप काम नहीं करते हैं, फाकी मारते हैं। तो दूसरा कि आप अगर ब्रेक करना है और नहीं मिल रहा है, थोड़ा बीच में पानी पी लें, कभी काम टॉयलेट चल जाएं, बाथरूम चल जाएं, एक आध अपने दोस्त से 1 मिनट बात कर लें, इस तरह करके हम टाइम को एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इसके बाद एक और पाते हैं कि अभी नए युग में, चूँकि सरकारी जॉब बहुत कम है, लेकिन नया जनरेशन जॉब के पीछे पागल है। हम देखते हैं कि 28 साल 30 साल 32 साल हो गया है, लड़कियां लड़के बहुत क्या कर रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं। क्या चीज़ तैयारी कर रहे हैं? कंप्यूटर से तैयारी कर रहे हैं। कैसे तैयारी कर रहे हैं? तो मोबाइल पे, क्यों अधिकांश घरों में लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं होता है। तब पूछते हैं फिर नेक्स्ट रात को क्या कैसे करती हो, सो के पढ़ती हो, सो के पढ़ते हो? तो हाँ सर। तो उस हालत में उनके लिए सलाह होता है कि तुम कोशिश करो एक टाइम मेंटेन करने का, फिक्स टाइम पे सो, फिक्स टाइम पे उठो, और सो कर नहीं बैठ कर मोबाइल देखो बीच में इंटरप्शन। तो इस तरह करें, कोशिश करते हैं उन लोग कंसोल करने का, कोशिश समझाने का, अधिकांश केस में रिजल्ट मिलता है। ऐसे मरीज का 2 शिकायत होती है, एक होता है आँख में दर्द, दूसरा होता है माथे में दर्द। और जब हम स्क्रीन टाइम कम करते हैं, चेंज करते हैं, इनकी शिकायत अपने आप ठीक हो जाती है। प्लस कुछ लोग का जेन्युइनली ड्राई आई सिंड्रोम होता है, जिसमें उसका आंसू कम बन पाता है। तो ऐसी स्थिति में हम बाहर से आंसू जोड़ते हैं इन द फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल टीयर, और वो हम डालते हैं जिससे कि कॉर्निया हमारा वेट भींगा हुआ रहे। इस तरह हम मरीज को समझाते हैं, कंप्लेंट करते हैं, दूर करते हैं उसकी।
1: जी डॉक्टर साहब, प्रायः लोग सोने के समय रात में मोबाइल देखते हैं, और खासकर अंधेरे में मोबाइल देखते हैं रातों में, ये कितना नुकसान पहुंचाता है हमारे?
0: ये बहुत नुकसानदेह है। आजकल आप देखोगे कि पेपर में या मीडिया में बीच में हेल्थ संबंधी जो आता है प्रोग्राम, उसमें बताता है कि रात को आप मोबाइल एकदम मत देखो, अंधेरा में देखने की बात ही नहीं है, उसके बदले आप म्यूजिक सुना करो। ये रात को देखने का ही कारण है कि अधिकांश लोग आजकल डिस्निया या एपनिया, लॉस ऑफ स्लीप से परेशान है। मैक्सिमम लोग को अच्छी नींद नहीं आती है, और नींद नहीं आने के कारण नेक्स्ट डे वो फ्रेश नहीं फील करता है, उसको हेडेक होता है, परेशानी होती है। तो अगर वो टाइमिंग मेंटेन करे सोने के पहले मोबाइल नहीं।

0: देखे तो इसका बहुत सारा फायदा उसको होगा, और साथ में सीजनल जो भी साग सब्जी या फल उपलब्ध है उसे वो जरूर ले। और सीजनल साग सब्जी या फल बहुत महंगे नहीं हैं, महंगे जो फल है उसकी आवश्यकता नहीं है, सस्ता फल उतना ही फायदेमंद है जितना महंगे फल फायदेमंद है
1: जी। छोटे बच्चे के माता पिता को आप क्या कहेंगे कि बच्चों पर नज़र रखें और लगातार मोबाइल पर यदि बच्चा आपका लगा रहता है तो उससे आप उसे बचाने की कोशिश कीजिए?
0: नहीं नहीं, मोबाइल पे बच्चे को बचाने की कोशिश करिए, लेकिन कहने से काम नहीं चलेगा। आप बच्चे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करिए, उनको इंटरटेन करिए, उनको फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व करिए, जिससे कि वो अपना टाइम मोबाइल को छोड़कर दूसरे रूप में बात कर सके। अगर आप नहीं समय अपने देंगे तो समय कहाँ से आएगा उसके पास, बच्चा कैसे इन्वॉल्व होगा? तो उसको फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व करना ज़रूरी है, और साथ में आप स्वयं भी जो बच्चे को बताना चाह रहे हैं स्वयं भी वो करिए, तभी हो पाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप मोबाइल पर रहोगे, बच्चे को मोबाइल मत देखो, तो उसको ध्यान देना पड़ेगा।
1: मोबाइल पर कम समय देने की कोशिश कीजिए, बहुत ज़रूरी है, तभी आप मोबाइल देखें, और ख़ासकर बच्चों पर भी निगाह रखने की आवश्यकता है।
2: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर त्रिभुवन प्रसाद वर्णवाल से ली गई बातचीत। इसी बातचीत के साथ ही हमारा आज का ये प्रोग्राम समाप्त होता है। शामिल होते हैं अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के प्रसारण सेवा में, जहाँ से आप सुनेंगे क्रमशः संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
3: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम, प्रवाचक दिव्यानंद झा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ह्यः आर्थिक परामर्श परिषदः सदस्यैः समं आकारितस्य उपवेशनस्य अध्यक्षताम् अकरोत्। उपवेशने प्रधानमंत्री परिषद सदस्याश्च वैश्विका निश्चितता काले भारतस्य भूयोपि आर्थिक वृद्धिं कर्तुं विभिन्नेषु परामर्शोपायेषु चर्चितवन्तौ। जीवनस्तरं व्यापारं च सुगमीकर्तुं अपि सविस्तरं विचारणा जाता। सदस्यैः भारते विश्वे च पश्चिमैशिया संघर्षेण उत्पन्न प्रभावानाम् अपि आकलनं प्रस्तुतम्। विदेशमंत्री डॉ सुब्रह्मण्यम जयशंकरः उक्तवान् यत् भारतं नेपालं च सुदीर्घ मुक्त सीमायां सुरक्षा व्यवस्थां प्रवर्तयितुं दृढतया सहयोगं कुरुतः, अपि च उभौ देशौ संकटकाले अपि सर्वदैव परस्परं साहाय्यं कुरुतः। नवदिल्ल्यां नेपालस्य विदेशमन्त्रिणा शिशिर खनालेन सह उपवेशने डॉ जयशंकरः अवदत् यत् उभयोः देशयोः सम्बन्धः जीवित जनसम्बन्धस्य सीमापार सम्पर्कस्य पारस्परिक सांस्कृतिक धार्मिक परम्पराणां च सुदृढाधारे विनिर्मितः अस्ति। केन्द्रीयः गृहमन्त्री अमितशाहः अन्ताराष्ट्रिय सीमासु वित्तीय व्यवहारस्य भवन निर्माणस्य सम्पत्ति क्रय विक्रयणस्य च विषये विशेष समवधानतायै आहूतवान्। एषः निर्देशः बीएसएफ इति सीमा सुरक्षाबलस्य त्रिपुरा सीमा मुख्यालये गृहमन्त्रिणः अध्यक्षतायाम् आकारिते पूर्वोत्तर राज्य सीमा क्षेत्र विषयके सम्मेलने प्रदत्तः। गृहमन्त्री विगत पञ्चवर्षाणां भूमिलेखानां परीक्षणाय अपि निर्दिष्टवान्। सीबीएसई इति केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद अंकसत्यापनार्थं पुनर्मूल्यांकनार्थं च आवेदन समर्पणाय अन्तिमां तिथिं जून मासस्य सप्तम दिनांकपर्यन्तं अग्रे सारितवती। परिषदा उक्तं यत् विद्यार्थिनः अद्य मध्यरात्रिं यावत् स्वावेदनानि अर्पयितुम् अर्हन्ति। इतः पूर्वम् आवेदन समर्पणाय अन्तिमा तिथिः अस्य मासस्य षष्ठः दिनांकः एव आसीत्। प्रियः श्रोतारः, संस्कृत जगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः सम्बलितस्य संस्कृत साप्ताहिकीति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः एफएम गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य मध्याह्ने सार्धैकवादनतः भविष्यति। भवन्तः सर्वे यथाकालं श्रोतुं प्रभवन्ति। भारतीयर्तुविज्ञानविभागेन अनुमितं यत् अद्य तटीय कर्णाटक माहे केरलेषु मूसलाधारवृष्टिः भविष्यति। पूर्वोत्तर राज्यानां अधिकतर भाग

0: त्रीणि शून्यम् इति अङ्कान्तरालेन पराजितः। ध्यानास्पदम् अस्ति यत् भारतेन षष्ठवारम् एषा श्रृङ्खला जिता। अपरतः नवचण्डीगढे भारताफगानिस्तानयोः एकमात्र क्रिकेट निकषस्पर्धायाः प्रथमदिनस्य क्रीडासमाप्तिपर्यन्तं भारतेन क्रीडकत्रयस्य हानिपूर्वकम् अष्टषष्ट्यधिकत्रिशतं धावनाङ्काः अर्जिताः। अद्य भारतम् इतः अग्रे क्रीडिष्यति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री की कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य की सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। श्री शाह ने पिछले 5 वर्ष के जमीन से जुड़े दस्तावेजों की जांच कराने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक अनिश्चितताओं के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बैठक में भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में कल विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं के आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री की खबरों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा कि ये छात्रों उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एनटीए ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में न आने की सलाह दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से मुलाकात की। बैठक के बाद श्री जयशंकर ने 2015 के भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यक्रम के तहत नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं वर्चुअल माध्यम से सौंपी। बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर आधारित हैं।
2: Collaborate closely to maintain security.
3: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
1: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा सागर मेले को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने का काम शुरू हो चुका है। साथ ही दक्षिणेश्वर और कालीघाट जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों की सुविधाओं में भी सुधार किए जाएंगे। उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल रोजगार के अवसरों में कमी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त रहा। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बनाए। न्यू चंडीगढ़ में खेल समाप्त होने तक कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। केएल राहुल ने 100 रन की पारी खेली। दूसरे दिन का खेल आज सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों, आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान और

द्वीप समूह में अगले 2 दिन तक तेज बारिश की संभावना है। आज पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में तेज हवा के साथ बिजली चमकने की भी आशंका है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून आज महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर में आगे बढ़ा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

विक्रम के लिए हम शामिल होते हैं अपने आकाशवाणी के मुंबई केंद्र के प्रसारण सेवा में रात्रि 9:30 से। रजनीगंधा कार्यक्रम हम लेकर आएंगे रात्रि 10:00। 11:00 आप सुनेगा हिंदी में समाचार और अंग्रेजी में समाचार 11:05 पर। हर रोज की तरह सभा की समाप्ति की जाएगी रात्रि 11:10 पर। आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण।

बाल सभा कार्यक्रम सुनने वाले सभी बच्चों को जय हिंद। इस बार गर्मी की छुट्टियों में सच्चे दोस्त बनाइए अपने किताब को। गर्मी में स्कूल की छुट्टियों और किताबों का याराना पुराना है, मगर स्मार्टफोन इस यारी में दरार डालने का हर संभव कोशिश करता है। तो इसलिए चाहिए कि हम अपने मोबाइल को दूर रखें इस गर्मी की छुट्टी में और किताबों को अपनाएं। किताबों में बहुत सारी कहानियाँ होती हैं, जानकारी होती हैं, आप उसे अपनाएं। अगर आप अपने घर से बाहर निकले हुए हैं, नानी के यहाँ गए हुए हैं या अन्य रिश्तेदारों के यहाँ गए हुए हैं, तो आपको गर्मी का एहसास तो हो ही रहा होगा। ये गर्मी की छुट्टी प्रायः मई महीने के अंतिम में और जून में ही होते हैं, और जून में जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि बेहद गर्मी का सामना हम सभी करते हैं। तो गर्मियां जो हैं, गर्मी का मौसम, इसका सामना हम करते हैं, लेकिन ये सोचते हैं कि काश अगर हमारे आसपास वृक्ष होते हैं, ठंडी हवाएं चलती तो कितना अच्छा लगता, कितना मज़ा आता है। तो वृक्षों की कटाई लगातार बढ़ रही है, ऐसे में हम सभी को चाहिए बच्चों विशेष रूप से कि पर्यावरण का ख्याल रखें। आप भविष्य हैं, देश के भविष्य हैं, तो आपको चाहिए कि अपने आसपास के जो खाली पड़े जगह हैं उसमें वृक्ष लगाएं। वृक्ष से जो है होते हैं वायु होते हैं निकलते हैं, वायु से हमारी आयु बढ़ती है। तो शुद्ध वायु से हमारा आयु बढ़ता है। क्या है कि अगर वन है तो वन है तो अन्न है तो जीवन है। तो ये चक्र चलता रहता है। पर्यावरण की रक्षा हम सबों को करने की आवश्यकता है, इसका ख्याल रखना है। पर्यावरण का मतलब केवल पेड़ पौधे ही नहीं होते हैं, हमारे आसपास मिट्टी, जल, नदियाँ, तालाब जो होते हैं, ये सारे जो हैं वो पर्यावरण की श्रेणी में आते हैं। और पर्यावरण की रक्षा करना हम सबों का कर्तव्य बनता है। और अपने आसपास के जो इलाके हैं उसे प्रदूषित ना करें, जल जमाव जहाँ पर हैं उसे आप साफ़ सुथरा करें, और कोशिश करें कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो होता है उसका यूज़ हम बंद कर दें। पर्यावरण की रक्षा करना हम सबों का कर्तव्य बनता है। ये अभी दो दिन पहले ही हम सभी विश्व पर्यावरण दिवस मनाए, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, और संकल्प लिया जाता है कि हम पर्यावरण को बचाएंगे। और हमारा ही कर्तव्य बनता है, अगर हम आज पर्यावरण को संतुलित और संरक्षित रखते हैं तो आने वाला कल है वो बहुत ही खूबसूरत होगा। बातें बहुत सारी हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, सुनते हैं प्यारा सा गीत।

0: al कल्याण।
1: मैं अफरीना खान शांति एवं बाल कल्याण पर विषय प्रस्तुत करने जा रही हूँ। शांति एक मनुष्य के लिए सबसे ज़रूरी और महत्वपूर्ण साबित होती है। आज लोगों के पास भौतिक सुविधाएं बहुत हैं, लेकिन इन सब के बावजूद उनके मन की शांति नहीं है। धन दौलत से संसाधन खरीदे जा सकते हैं, लेकिन शांति नहीं। केवल मुख से चुप रहने से शांति नहीं मिलती, बल्कि सच्ची सुख शांति वही है जो मन से प्रफुल्लित हो। यह सभी लोगों के लिए लाभकारी है और छात्र छात्राओं में इसका अहम हिस्सा है। विद्यार्थी जीवन में शांति एवं शिष्टाचार एक अनिवार्य अंग है। जीवन का प्रथम भाग विद्या उपार्जन का काल है। विद्या अध्ययन करने का स्वर्ण काल है। भविष्य का श्रेष्ठ नागरिक बनने की क्षमता और सामर्थ्य उत्पन्न करने की बेला है। अतः विद्यार्थी को विद्या का शुद्धा शांत करने तथा जीवन निर्वाह योग बनाने के लिए आदर्श विद्यार्थी बनना होगा। एक आदर्श विद्यार्थी अपने मन, वचन और कर्म में शांति व एकता स्थापित कर जीवन के सत्य स्वरूप को स्वीकार करता है। विद्यार्थी का लक्ष्य है विद्या प्राप्ति। सच्चा विद्यार्थी वही होता है जो सदा शिष्ट सद्भाव एवं शांत होता है। तुलसीदास ने इसी भाव का समर्थन करते हुए कहा है, यथा नवहिम बुद्ध विद्या पावे। वही विद्यार्थी सफल है जो सदा शांत भाव रखे। कटुवाणी मारपीट से कभी किसी का भला नहीं हुआ है। वह व्यक्ति जो हमेशा बुरे कामों में लीन हो, कभी सफलता या दूसरों के लिए सही साबित नहीं होता। एक विद्यार्थी को स्वावलंबी एवं सदाचारी बनना चाहिए। संस्कृत साहित्य में आदर्श विद्यार्थी के 5 लक्षण बताए गए हैं। वे हैं काक चेष्टा वको ध्यानम, श्वान निद्रा तथैव च, अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। अर्थात विद्या प्राप्ति के लिए कौवे जैसे सतर्कता चाहिए, एकाग्रचित्ता बगुले के समान होनी चाहिए, जरा सी आहट पाकर टूट जाने वाली निद्रा होनी चाहिए, कम भोजन तथा घर से दूर रहना चाहिए। जिस विद्यार्थी का मन साफ और शांत हो, उसे कोई भी कठिनाई रोक नहीं सकती, क्योंकि वह अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित है। हमें अपने सारे लक्ष्य जिन्हें हम ग्रहण करना चाहते हैं, उससे हमें कभी वंचित नहीं होना चाहिए, चाहे फिर वह कैसी भी परेशानी या दिक्कतें हों। शांतमय जीवन जीने वाले व्यक्ति का निर्माण करना ही शांति शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। शांति जीवन में यदि ना हो तो जीवन का अर्थ नहीं बचता। सभी लोग चाहते हैं कि वो खुश और शांति में हो। बुराई से ना कोई अच्छा जीवन यापन कर पाया है और ना ही कर पा सकता है। विद्यार्थी जीवन में शांति होनी अनिवार्य है। इसके बिना कोई भी विद्यार्थी अच्छी विद्या ग्रहण नहीं कर सकता। शांत, सुशील, यह सब गुण विद्यार्थी की शान होती है, जो उनके जीवन में आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित करती हैं। अच्छे शिष्टाचार हमें सार्वजनिक स्थान पर लोगों का दिल जीतने में सहयोग करते हैं। इसीलिए एक अच्छा और शिष्ट व्यवहार एक अद्वितीय व्यक्तित्व बनाने की क्षमता रखता है। अच्छे शिष्टाचार वाला व्यक्ति भावनाओं और परिवेश में रहने वाले दूसरों की भावनाओं के प्रति सम्मान दिखाता है। वह कभी भी लोगों को अलग नहीं करता और सभी के लिए समान संबंध दिखाता है। शील, विनम्रता, दया और शिष्टाचार एक अच्छे व्यवहार वाले व्यक्ति के अनिवार्य लक्षण है। इसीलिए एक अच्छा व्यवहार करने वाला व्यक्ति कभी भी गर्व या अभिमानी महसूस नहीं करता है और हमेशा दूसरों की भावनाओं का

0: ख्याल रखता है। अच्छे शिष्टाचार का अभ्यास करना और दिन भर इनका पालन करना निश्चित रूप से जीवन को पल्लवित करता है और शांति लाता है। लड़ाई, दुख और लालच को भंग करने के लिए शांति सशक्त औजार है। कई लोग कहते हैं कि बिना इसके शांति नहीं हो सकती। इसके साथ ही भौतिक सुख सुविधाएं तथा अन्य संसाधनों से शांति होगी, यह कहना भी गलत नहीं है। यदि इससे ही शांति हो जाती तो हम मंदिर या आदि के चक्कर क्यों लगाते। आवश्यकताओं को पूरे करते करते समय निकल जाता है और ना तो शांति मिलती है और ना ही खुशी। खुशहाल जीवन जीने के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि हम खुश रहें। बिना शांति के हमारा जीवन नरक से भी बदतर बन जाता है। जहाँ शांति है वहाँ विकास है, जहाँ विकास है वहाँ सुख है। इसीलिए अमूल्य शांति के लिए सबसे पहले हमें अपने आप को देखना होगा, अपने आप को अच्छी तरह पहचानना होगा। जब हमारे अंदर शांति आएगी तभी हम स्वयं का विकास बेहतर तरीके से कर सकते हैं। शांति ही विकास का रास्ता है, बिना इसके प्रगति हो ही नहीं सकती। जो सफल होना चाहते हैं उन्हें शांत और शिष्टाचारी बनना होगा। शांति एक ऐसा हथियार है जो किसी भी दुष्ट को परिवर्तित कर सकता है। इसीलिए हमें हमेशा शांत व सुखी रहना चाहिए किसी भी परिस्थिति में, क्योंकि यह मन की सारी बुराई और गंदगियों का नाश कर सकती है। महात्मा गांधी के द्वारा कही गई वचनों को मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। शांति का कोई रास्ता नहीं है, केवल शांति है। इन्हीं वचनों से मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। धन्यवाद।
1: बच्चों, अभी आप सुन रहे थे आफरीन खान की बेहद खूबसूरत वार्ता। विषय था शांति एवं बाल कल्याण। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आपके लिए एक छोटा सा गीत।

0: हम
1: बच्चों, इसी गाने के साथ ही हमारा और आपका बाल सभा कार्यक्रम समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल सभा FM 103 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का, ये डाल्टनगंज केंद्र है। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत पर हमारा आधारित कार्यक्रम राग रंग। इस प्रोग्राम में हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमती सिद्धेश्वरी देवी से राग ठुमरी में खमाज़।

शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे थे श्रीमती सिद्धेश्वरी देवी से ठुमरी गायन। तो इसी के साथ ही हमारा आज का यह प्रोग्राम समाप्त होता है। शामिल होते हैं अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र की प्रसारण सेवा में, जहां से आप सुनिएगा समाचार प्रभात और मॉर्निंग।

0: प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के लीक होने के कथित दावों का खंडन किया। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी। पश्चिम बंगाल सरकार राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर विकास कार्य शुरू करेगी। भारत ने नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं सौंपी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने कहा वर्ष 2044 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र में हवाई यातायात में तेजी लाने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और फुटबॉल में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार सैफ महिला चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों के खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में बीएसएफ के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। हमारे संवाददाता आदित्य दत्त की रिपोर्ट।
1: गृहमंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वास्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा, मुख्य सचिव जेके सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अनुराग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी 8 सीमावर्ती जिलों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की चेतावनी दी। एनटीए ने उम्मीदवारों, अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में न आने की सलाह दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से मुलाकात की। बैठक के बाद श्री जयशंकर ने 2015 के भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यक्रम के तहत नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं वर्चुअल माध्यम से सौंपी। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच व्यक्तिगत रूप से धन के लेन देन को सुगम बनाने के लिए UPI समन्वय का संयुक्त रूप से शुभारंभ किया। बैठक के दौरान विदेश मंत्री ने कहा कि

0: भारत और नेपाल अपनी लंबी और विशिष्ट रूप से खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग करते हैं और दोनों देश हमेशा आवश्यकता के समय एक दूसरे के साथ खड़े हैं।
1: कोलैबोरेट क्लोजली टू मेंटेन सिक्योरिटी,
2: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
1: फुल पोटेंशियल ऑफ आवर टाइम।
0: नेपाल के विदेश मंत्री श्री शिशिर खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है और नेपाल ने भारत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि नेपाल और भारत केवल दो देश नहीं बल्कि एक गौरवशाली प्राचीन सभ्यता के साझेदार हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में विमानन के विकास में भारत की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। इस क्षेत्र में 2044 तक भारतीय यात्रियों की संख्या लगभग 4 अरब तक पहुंचने का अनुमान है।
3: अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ के एशिया प्रशांत क्षेत्र के उपाध्यक्ष शेल्डन ही ने कल ब्राजील में बताया कि भारत पिछले कई वर्षों से एशिया प्रशांत क्षेत्र के विमानन विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते घरेलू नागर विमानन बाजारों में से एक है। श्री शेल्डन ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में पिछले 5 से 10 वर्षों में मजबूत वृद्धि हुई है और भविष्य में भी इसके मजबूत बने रहने की आशा है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ 370 से अधिक एयरलाइनों का प्रतिनिधित्व करता है या वैश्विक हवाई यातायात का लगभग 85% हिस्सा है। 82वीं अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ वार्षिक आम बैठक और विश्व हवाई परिवहन शिखर सम्मेलन 6 से 8 जून तक ब्राजील में आयोजित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा सागर मेले को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने का काम शुरू हो चुका है, साथ ही दक्षिणेश्वर और कालीघाट जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों की सुविधाओं में भी सुधार किए जाएंगे। उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल रोजगार के अवसरों में कमी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त रहा। श्री अधिकारी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस शासन की सरकार ने विकास के बजाय तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दिया। घरेलू रसोई गैस की पश्चिम बंगाल रोजगार के अवसरों में कमी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त रहा। श्री अधिकारी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस शासन की सरकार ने विकास के बजाय तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दिया। घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस की कीमत 913 रुपए से बढ़कर 942 रुपए हो जाएगी। रूस ने कहा है कि यूक्रेन ने सेंट पीटर्सबर्ग और उसके आसपास के इलाकों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। रूस ने लेनिनग्राद क्षेत्र के आसपास 140 से अधिक ड्रोन मार गिराए गए।
4: गवर्नर अलेक्जेंडर ड्रोजडेंको ने निवासियों से घरों के अंदर रहने का आग्रह किया है। श्री ड्रोजडेंको ने कहा है कि किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं मिली है, हालांकि कई जिलों में ड्रोन का मलबा गिरने की सूचना मिली है। इससे आवासीय भवनों को मामूली नुकसान हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेनी ड्रोनों ने सेंट पीटर्सबर्ग क्षेत्र तक की दूरी तय की और दुश्मन नौसेना के शस्त्रागार और क्रोनस्टेड में एक अड्डे को निशाना बनाया। ज़ेलेंस्की के आज ब्रिटेन का दौरा करने और यूक्रेन के निकट यूरोपीय सहयोगियों प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत की आशा है। समाचार कक्ष से मैं राजेश कुमार मीणा।
0: इसराइल के हमले में 2 महिलाओं सहित कम से 7 फिलिस्तीनी मारे गए। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि कल काहिरा में मध्यस्थों ने हमास और अन्य गुटों के साथ तनावपूर्ण युद्ध विराम समझौते को सुरक्षित रखने के लिए बातचीत फिर से शुरू की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से हुआ युद्ध विराम इसराइल के हमलों को रोकने में विफल रहा है और इसराइल ने गजा के आधे से अधिक हिस्से पर नियंत्रण बनाए रखा है। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो भारत पहुंच गए हैं। श्री सुगियानो नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान दोनों मंत्री भारत और इंडोनेशिया के बीच मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करेंगे।
5: सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 के फाइनल मुकाबले में कल भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को

0: 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम किया। 7 साल बाद भारतीय टीम ने ट्रॉफी अपने नाम की है। एक रिपोर्ट।
1: गोवा के मडगांव में खेले गए सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही भारतीय महिला टीम ने 7 साल बाद इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी को फिर अपने कब्जे में लिया। खिताबी मुकाबले की शुरुआत में ही दोनों टीमों के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिली। पहले हाफ में भारत की ओर से प्यारी झाकसा गोल करके टीम को बढ़त दिलाई। पहले हाफ की समाप्ति तक दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर थी। दूसरे हाफ में भारतीय टीम पूरी तरह हावी नजर आई। संस्विदा ने शानदार गोल कर भारत को फिर बढ़त दिलाई, जबकि लिंडा कॉम ने तीसरी गोल दागकर जीत पर मुहर लगा दी। इसके बाद बांग्लादेश की टीम वापसी नहीं कर सकी और भारत ने 3-1 से मुकाबला अपने नाम कर लिया। पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय टीम ने फाइनल में भी अपना दबदबा कायम रखा और ब्लू टाइग्रेस ने एक शानदार जीत के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया। आकाशवाणी समाचार के लिए पणजी से निखिल उपाध्याय।
0: और अब अन्य खेल खबरों के साथ है वीरेंद्र कौशिक।
2: भारत एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में अफगानिस्तान के साथ नया चंडीगढ़ में आज दूसरे दिन अपनी पहली पारी में 3 विकेट के नुकसान पर 368 रन के स्कोर से आगे खेलना शुरू करेगा। केएल राहुल और कप्तान शुभमन गिल के शतक की बदौलत भारतीय टीम मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। कप्तान गिल 103 रन और ऋषभ पंत अर्धशतक बनाकर क्रीज पर हैं। दूसरे दिन का खेल आज सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। ये एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है। उधर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने कल इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उपकप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। हॉकी में जापान के काका मिगाहारा में भारत की अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में कल भारत ने जापान को 4-1 से हराया।
0: केरलम के 7 जिलों त्रिशूर, पलक्कड़, मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के शेष 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है।
3: केरलम में तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार कल भी केरलम में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। खराब मौसम और ऊंची समुद्री लहरों को देखते हुए केरलम के तटीय क्षेत्रों में मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथि एम पुलुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
0: विभाग ने कर्नाटक के तटीय इलाकों माहे में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कर्नाटक, कोंकण तथा गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, हिमालय के तटीय क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु और पुदुचेरी के कुछ हिस्सों में भी आज वर्षा की संभावना है। आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ स्थानों पर आज गरज के साथ बिजली गिरने का अनुमान व्यक्त किया गया है। आंध्र प्रदेश के भाग और ओडिशा के कुछ हिस्सों में आज लू चलने की संभावना है। ओडिशा में आज रात गर्म मौसम रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आर्थिक रफ्तार को तेज करने की खबरें सभी अखबारों में हैं। लोक सत्य की सुर्खी है, आर्थिक मोर्चे पर निपटने के लिए बनाई गई रणनीति। पत्र ने इसी विषय पर डील, मौसम और चुनौतियां शीर्षक देकर संपादकीय में लिखा है कि सवाल केवल तेल का नहीं, बाकी बहुत सी चीजें हैं जिन पर भारत निर्यात में अग्रणी है। पत्र आगे लिखता है, मॉनसून अच्छा रहे, युद्ध के बादल छट जाएं, इससे बड़ा सुकून भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए और क्या हो सकता है। अमर उजाला की खबर है, नेपाल की नई सरकार के साथ नई गर्माहट। नेपाल के विदेश मंत्री बोले, भारत के साथ संबंध सर्वोच्च प्राथमिकता। पत्र ने इस खबर को शीर्षक दिया है, अतीत का कोई भी बोझ भारत से रिश्तों में बाधा नहीं। दिल्ली से सिलीगुड़ी तक दौड़ेगी बुलेट ट्रेन, 6 घंटे में ही तय हो जाएगा सफर। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय का असर रेल परियोजनाओं पर दिखने लगा है। राजस्थान पत्रिका की खबर है, भारत में छोटे परिवार की चाहत से बूढ़ा हो रहा युवा भारत। पत्र ने ढलान पर जलमदर की खतरे की घंटी बताते हुए लिखा है कि अगले 20-30 साल बाद युवा कामगारों की संख्या घटेगी। अखबारों ने खेल जगत की तीन महत्वपूर्ण खबरों को एक साथ दिया है। नवभारत टाइम्स ने प्रज्ञानंदा के नॉर्वे शतरंज का खिताब जीतने, वैभव सूर्यवंशी के सबसे कम उम्र में भारतीय क्रिकेट टीम में जगह बनाने और रूस की 19 वर्षीय मीरा आंद्रीवा के फ्रेंच ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीतने की खबरें एक साथ दी हैं। दैनिक ट्रिब्यून कहता है, खेलों का शानदार शनिवार, हॉकी से शतरंज तक युवाओं की बिसात। हिंदुस्तान ने लद्दाख के प्रति पर्यटकों की बढ़ती रुचि पर लिखा है, लोगों को भा रहा है ठंडा रेगिस्तान। पत्र के अनुसार 2020 में अटल टनल खुलने के बाद से पर्यटकों की पहुंच बेहतर हुई।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र लीक होने के कथित दावों का खंडन किया। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी। पश्चिम बंगाल सरकार राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर विकास कार्य शुरू करेगी। भारत ने नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं सौंपी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिसंघ ने कहा, वर्ष 2044 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र में हवाई यातायात में तेजी लाने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार सैफ महिला चैंपियनशिप जीती। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। होम मिनिस्टर अमित शाह कॉल्स फॉर शार्पर विजिल ऑन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स एंड सेल एंड परचेज ऑफ प्रॉपर्टीज अलोंग इंटरनेशनल बॉर्डर्स। National Testing Agency dismisses claims of NEET UG 2026 re-exam paper leak as false, warns of strict action against those spreading such content. West Bengal government to undertake major development initiatives to upgrade facilities at key religious sites across the state. India hands over 72 health facilities and 12 cultural heritage projects to Nepal. International Air Transport Association says India will be significant player to air traffic boom in Asia-Pacific region by 2044. And in football, India beat defending champions Bangladesh 3-1 to win SAF Women's Championship for record 6th time. And now the news in detail. Union Home Minister Amit Shah has called for a sharper vigil on financial transactions, constructions of buildings and sale and purchase of properties along the international borders. The directive came during a meeting chaired by Mr. Shah at BSS Tripura Frontier Headquarters regarding the border areas of the northeastern state. More from our correspondent.
6: Home Minister directed that an examination of land records of the last 5 years be conducted. Mr. Shah said frequent operations against drug and arms trafficking must be conducted and the entire chain of contributors to drug trafficking must be dealt with the ruthless approach. He said that ensuring financial discipline in the border districts is the responsibility of the states. Mr. Shah directed that collectors and GST officials be trained and that the Central Board of Direct Taxes CBDT conduct a survey on fake currency. Home Minister said that camps must be organized to train people living along the border to tackle the threats of narcotics and firearms and instructed that the presence of Patwari sentinels, local police and PSF personnel be ensured in these camps.
7: For Akashvani News, Shuman Bhattacharji, Agartala.
5: The National Testing Agency or NTA has refuted the claims circulating on social media and messaging platforms regarding an alleged leak, advance access or sale of the NEET UG 2026 re-examination question paper. In a social media post, NTA said that such content is the work of organized cheating rackets that prey on the anxiety of students and their families. A report.
8: The agency asserted that the integrity of the examination process remains fully intact and that all necessary safeguards are in place to ensure a fair and secure examination for candidates. NTA said it is actively identifying and reporting the offending channels, accounts and content to the concerned platforms and to cybercrime authorities for immediate takedown and action. The agency has advised candidates and parents not to engage, pay or forward any such message and not to follow prey to the fraudulent solicitations. The agency has also urged all aspirants to ignore the rumors and to rely solely on official communication issued by NTA through its verified website and channels. Priya Mondal, Akashwani News, Delhi.
5: Minister of State for Health and Family Welfare, Anupriya Patel, has said that the government is committed to fostering a digital health ecosystem in the country. In an exclusive interview with Akashwani News, the minister said that India has created over 90 crore unique Abha identity cards under Ayushman Bharat Digital Mission and over 100 crore digital medical records have been linked to these Abha IDs. The full interview will be broadcast in our special series, 12 Years of the Modi Government, today at 7:10 p.m. on 100.1 MHz Akashwani FM Gold and additional frequencies. West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari has said that the BJP government will undertake major development initiatives to upgrade facilities at key religious sites across the state, such as Dakshineshwar and Kalighat temples. He said work has already commenced to elevate the Ganga Sagar Mela to international standards, while facilities at prominent religious landmarks like Dakshineshwar and Kalighat will be significantly upgraded. Speaking at a program in Kolkata, Mr. Adhikari said grand arrangements will be made for the upcoming Shrabani Mela at Tarakeshwar. Hitting out at the previous Trinamool Congress administration, the Chief Minister alleged that West Bengal suffered from acute lack of employment opportunities and systemic corruption over the past 15 years. Describing West Bengal as a sacred spiritual land, Mr. Adhikari said the era of appeasement, lawlessness and lack of investments is now over. Mr. Adhikari emphasized that the alignment of the state government with the centre will accelerate development, as he cited a series of central government projects being implemented in West Bengal. Prime Minister Modi chaired a meeting with members of the PM Economic Advisory Council. The Prime Minister and the EAC discussed various ideas and measures to further boost India's economic growth in times of global turmoil. Various reforms to improve ease of living and ease of doing business were also discussed. In a social media post yesterday, the Prime Minister said they deliberated on a wide range of issues relating to India's economic transformation and long-term development priorities. They also shared perspectives on adding more momentum to the reforms journey and ensuring ease of living as well as ease of doing business. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download the News on AR app. Welcome back. You're listening to Morning News. External Affairs Minister S. Jayashankar virtually handed over 72 health facilities and 12 cultural heritage projects to Nepal under the reconstruction program post the 2015 earthquake after meeting with his visiting Nepalese counterpart Shishir Khanal in New Delhi. The two leaders jointly launched the linkage between UPI, Unified Payments Interface India, and the National Payments Interface of Nepal for facilitating cross-border personal remittances. Both leaders also witnessed the exchange of a Memorandum of Understanding between Digital India Bhashini and Kathmandu University for co-creating the national digital infrastructure for a voice-first language translation platform for Nepal. In his opening remarks during the meeting with Mr. Khanal, External Affairs Minister said that India and Nepal collaborate closely to maintain security along their long and uniquely open border, and the two countries have always stood by each other in times of need.
9: India and Nepal share a very special relationship built on a strong foundation of vibrant people-to-people ties, cross-border connect and shared cultural and religious traditions. It is anchored by shared trust, goodwill and mutual benefit, and our bilateral ties have steadily developed in areas like trade, commerce, investments, energy, development cooperation, education, disaster response and culture. We have an opportunity to also take it forward in many other areas. newer domains like startup, AI, information technology, renewable energy and others.
5: In his initial remarks, Mr. Khanal said, India is Nepal's most important partner and Nepal has placed highest priority to India. He said Nepal and India are not merely two countries, but stakeholders of a proud ancient civilization. The Foreign Affairs Minister of Nepal thanked India for fuel and fertilizer supply amid the West Asia crisis. Indonesian Foreign Minister Sugiono has arrived in New Delhi to co-chair the 8th India-Indonesia Joint Commission meeting with External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar. The External Affairs Ministry in a social media post said that during the meeting, the two ministers will review the robust, comprehensive strategic partnership between India and Indonesia and will discuss ways to further deepen bilateral cooperation. The International Air Transport Association, IATA, has said that India is a significant player in the growth story of air traffic in the Asia-Pacific region, where the number of air passengers is projected to reach 4.1 billion by 2044. Speaking at a briefing in the Brazilian city yesterday, IATA's Regional Vice President for Asia-Pacific, Sheldon He, said that India has been a significant contributor to the region's aviation growth story over the past several years. He noted that India is one of the world's fastest growing domestic civil aviation markets. He added that growth in the Asia-Pacific region has been strong over the past 5 to 10 years and is expected to remain robust over the next decade. In Kerala, 7 districts are under orange alert, indicating isolated very heavy rainfall. More from our correspondent.
10: The northern districts of Thrissur, Palakkad, Malappuram, Kozhikode, Wayanad, Kannur and Kasaragod in Kerala are under orange alert today, indicating isolated very heavy rainfall. Yellow alert has been declared in the remaining 7 districts, indicating isolated heavy rainfall. Intensive rainfall is expected to continue in Kerala on Monday as well. Rainfall up to 15 mm has been reported from almost all the observatories across Kerala this morning. Fishing activities have been banned along the coastal areas of Kerala. Nidhi M. Palluruthi, Akashvani News, Thiruvananthapuram.
5: Meanwhile, India Meteorological Department has forecast heavy to very heavy rainfall at isolated places over coastal Karnataka, Kerala and Mahi today. Parts of northeast India, the Andaman and Nicobar Islands, Karnataka, Konkan and Goa, Lakshadweep, Maharashtra, Sub-Himalayan West Bengal, Sikkim, Tamil Nadu and Puducherry are also likely to experience rainfall during the day. The price of domestic LPG cooking gas has been increased by 29 rupees per 14.2 kilogram cylinder. With effect from today, domestic LPG in Delhi will cost 942 rupees, rising from the earlier 913 rupees. In the SAF Women's Championship 2026 final, India defeated the defending champions Bangladesh 3-1 to win the title for a record 6th time. The match was played in Madgaon, Goa yesterday. After 7 years, the Blue Tigresses have once again lifted the trophy. A report.
11: In the SAF Women's Championship 2026 final played in Madgaon, Goa, India defeated Bangladesh 3-1 to win the title for a record 6 time. With this victory, the Indian women's team has brought the prestigious trophy back after 7 years. From the very start of the final, both teams played with strong intensity. In the first half, India took the lead through a goal by Pyari Jaksa. However, Bangladesh equalized with a goal from Rituporna Chakma. At the half-time, the score was 1-1. In the second half, India dominated the game. Scored a brilliant goal to put India ahead once again, and Linda Com added the third goal to seal the win. After that, Bangladesh could not make a comeback and India won the match 3-1. Throughout the tournament, the Indian team showed excellent performance and they continued their strong form in the final. The Blue Tigresses ended their campaign with a memorable victory. For Akashwadi News, Nikhil Upadhyay from Panji.
5: In the one-off test against Afghanistan, India will resume play at 368-3 in the first innings on day 2 in New Chandigarh today. Centuries from KL Rahul and Captain Shubman Gill, who remains unbeaten on 103, have put the men in blue in a strong position. Sai Sudarshan also contributed 81 before missing out on a maiden test century, while Rishabh Pant remained unbeaten with a brisk half-century. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Shagun Chopra.
12: Thank you, Saira.
5: Newspapers have noticed a variety of stories today, including the flare-up in tensions in the West Asia conflict. Sunday Pioneer writes, PM reviews economic roadmap, adding India must continue its development agenda despite global challenges. While the Sunday Statesman headlines, PM reviews economic strategy amid West Asia uncertainty. Cockroach backers swarm Jantar Mantar as 100 Sikh Pradhan ouster over paper leak, writes the Sunday Tribune in its top headline. Telangana CM calls for federal balance to safeguard citizens, writes the Hindu. Reeling rupee drags students abroad deeper into debt at home, writes the Economic Times. LPG price hiked by 29 rupees per 14.2 kg cylinder, writes Sunday Pioneer. US and Iran trade strikes near Strait of Hormuz as talks hit a wall, writes the Sunday Statesman, while another story headlines, UN Food Agency says millions are being pushed into hunger by Iran war. The Sunday Statesman, in its editorial titled Beyond Hormuz, writes the geopolitical shock created by the Iran conflict is forcing countries far beyond West Asia to confront an uncomfortable reality. Energy security can no longer be built around a single set of political assumptions. For India, the renewed importance of Venezuela is less a story about one oil supply.

0: इरफान अंसारी ने कहा, झारखंड में जल्द स्थापित होगा सेंट्रल रेडियोलॉजी हब, सरकारी अस्पतालों को मिलेंगी विशेषज्ञ सेवाएं। केंद्र सरकार ने खाद्य तेलों के मानक पैकिंग साइज लागू किए, पारदर्शिता और एक समान पैकेजिंग को बढ़ावा देना उद्देश्य। और मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में आज से अगले 4 दिनों के लिए आंधी के साथ बारिश और वज्रपात को लेकर जारी किया येलो अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। 18 जून को राज्य की 2 सीटों के लिए होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। झामुमो उम्मीदवार बैद्यनाथ राम, कांग्रेस से प्रणव झा और राज्य से 2 बार सांसद रहे परिमल नथवानी समेत अब तक कुल 6 उम्मीदवारों ने नामांकन पर्चा खरीदा है। भाजपा ने अब तक अपने प्रत्याशी की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। राज्यसभा चुनाव के लिए कल नामांकन की आखिरी तारीख है। झामुमो द्वारा राज्यसभा चुनाव के लिए बैद्यनाथ राम को उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद मुख्यमंत्री आवास में पार्टी विधायकों और सांसदों की अनौपचारिक बैठक हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विश्वास जताया कि बैद्यनाथ राम राज्यसभा में झारखंड की जनता की आवाज़ को मजबूती से उठाते हुए राज्य के हितों की प्रभावी पैरवी करेंगे। वहीं बैद्यनाथ राम ने पार्टी नेतृत्व और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति आभार जताया। राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के पर्यवेक्षक भूपेश बघेल और अजय शर्मा ने रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर महागठबंधन की रणनीति पर चर्चा की। बैठक के बाद अजय शर्मा ने गठबंधन को मजबूत बताते हुए कहा कि सभी मुद्दों पर मुख्यमंत्री और झामुमो नेतृत्व से सकारात्मक बातचीत हुई है। वहीं भूपेश बघेल ने कहा कि महागठबंधन में कोई गतिरोध या गलतफहमी नहीं है और गठबंधन राज्यसभा की 2 सीटों पर जीत दर्ज करेगा।
1: हेमंत जी से मुलाकात हुई, विस्तार से चर्चा हुई और गठबंधन की 2 सीटें हम जीतेंगे, बहुत विस्तार से चर्चा हुई है और खुल के बात हुई है और दोनों से हम जीतेंगे, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं था।
0: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन अपने 2 दिवसीय झारखंड दौरे के दूसरे दिन आज बोकारो स्टील सिटी में पार्टी कार्यकर्ता प्रीतम सिन्हा के आवास पर जाएंगे, जहां वे पार्टी कार्यकर्ताओं एवं स्थानीय नेताओं से संवाद करेंगे। इसके बाद वे ओरमांझी के कुचू स्थित भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के आवास पर जाएंगे। तत्पश्चात वे रांची स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय लौटेंगे, जहां जिला प्रभारियों, जिला अध्यक्षों तथा प्रदेश मीडिया, सोशल मीडिया और आईटी सेल के प्रतिनिधियों के साथ संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि झारखंड में जल्द ही सेंट्रल रेडियोलॉजी हब CRH की स्थापना की जाएगी, जिससे राज्य के सरकारी अस्पताल विशेषज्ञ रेडियोलॉजी सेवाओं से जुड़ेंगे। इस व्यवस्था के तहत एक्सरे, सिटी स्कैन और MRI जैसी जांचों की रिपोर्ट विशेषज्ञ रेडियोलॉजिस्ट केंद्रकृत प्रणाली के माध्यम से तैयार करेंगे, जिससे रिपोर्ट की गुणवत्ता और उपचार की गति में सुधार होगा। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर प्रसारित हो रही NEET UG 2026 पुनर्परीक्षा के प्रश्न पत्र के कथित रूप से लीक, अग्रिम पहुंच या बिक्री से संबंधित अफवाहों का खंडन किया है। एजेंसी ने कहा कि यह छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने जोर देकर कहा कि परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता पूरी तरह बनी हुई है, उम्मीदवारों के लिए निष्पक्ष और सुरक्षित परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय किए गए हैं। आकाशवाणी के ताज़ातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज़ रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एक रूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आहार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो, 15 और 20 किलो है। इस पहल का उद्देश्य बाजार में विभिन्न पैकेज आकारों की बढ़ती

0: संख्या कम करना है। इससे उपभोक्ताओं के लिए कीमतों की तुलना और सोच समझकर खरीदारी करना आसान हो जाएगा। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता चंपाई सोरेन ने रिम्स दो विवाद मामले में जन आंदोलन का ऐलान किया है। रांची में संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि जमीन बचाने के लिए 10 दिन के भीतर लाखों आदिवासी सड़क पर उतरेंगे।
1: जमीन संघर्ष समिति जो पिछले बार आह्वान किया था, इस बार भी आह्वान कर रहा कि यहाँ लाखों की संख्या में आएंगे और ये आदिवासी विरोधी मूलवासी विरोधी सरकार को एक बड़ा जन आंदोलन को सामना करना पड़ेगा। न्यायालय का दरवाजा भी जाएगा यहाँ का दर्द कि हम क्या इस रांची अंचल में आदिवासी पैदा होना क्या गुनाह है।
0: इधर भारतीय जनता पार्टी की नेता और पूर्व विधायक सीता सोरेन ने नगड़ी क्षेत्र में प्रस्तावित रिम्स दो अस्पताल के लिए कृषि भूमि अधिग्रहण का विरोध किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर किसानों और ग्रामीणों के हितों को ध्यान में रखते हुए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पर पुनर्विचार करने की मांग की। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक युवक को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से एक लोडेड देसी पिस्तौल और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। सिटी एसपी ललित मीणा ने बताया कि वह किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में था।
2: आदित्यपुर का रहने वाला है, वो कुछ बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था, लेकिन उससे पहले ही हमारी टीम द्वारा अच्छा कार्य करते हुए उसे पकड़ लिया गया और उसके पास से एक देसी पिस्टल और एक जिंदा गोली भी उसके पास से प्राप्त हुई।
0: झारखंड के ऊपर से एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन गुजरने के कारण राज्य के कई जिलों में अगले 4 दिनों तक कहीं कहीं आकाश में बादल छाए रहने, तेज हवा चलने, मेघ गर्जन और वज्रपात होने की संभावना है। कुछ स्थानों पर बारिश भी हो सकती है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल मुकाबले में भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6ठी बार खिताब अपने नाम किया। यह मैच कल गोवा के मडगांव में खेला जाएगा। 7 साल बाद भारतीय महिला टीम ने एक बार फिर ट्रॉफी अपने नाम की। एक रिपोर्ट।
3: गोवा के मडगांव में खेले गए सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6ठी बार खिताब अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही भारतीय महिला टीम ने 7 साल बाद इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी को फिर अपने कब्जे में लिया। पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय टीम ने फाइनल में भी अपना दबदबा कायम रखा और ब्लू टाइग्रेस ने एक शानदार जीत के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया। आकाशवाणी समाचार के लिए पणजी से निखिल उपाध्याय।
0: और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने राज्यसभा चुनाव की बड़ी हलचल की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। प्रभात खबर के शब्द हैं, राज्यसभा चुनाव झारखंड में रोमांच बढ़ा, हाई वोल्टेज मुकाबले के लिए राजनीतिक मैदान तैयार। हिंदुस्तान ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के झारखंड दौरे की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। लिखा है, संगठन की मजबूती के दिए मंत्र, मिशन 2029 पर मंथन। दैनिक जागरण लिखता है, घरेलू एलपीजी सिलेंडर 29 रुपए महंगा। दैनिक भास्कर ने लिखा है, सिविल जज भर्ती परीक्षा पीटी का संशोधित रिजल्ट जारी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यसभा चुनाव को लेकर राज्य में बढ़ी सियासी सरगर्मी। झामुमो से बैद्यनाथ राम, कांग्रेस से प्रणव झा समेत अब तक कुल 6 उम्मीदवारों ने खरीदा नामांकन पर्चा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के झारखंड दौरे का दूसरा दिन, कई संगठनात्मक कार्यक्रम में लेंगे भाग, बोकारो में पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं से करेंगे संवाद। स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने कहा, झारखंड में जल्द स्थापित होगा सेंट्रल रेडियोलॉजी हब, सरकारी अस्पतालों को मिलेंगी विशेषज्ञ सेवाएं। केंद्र सरकार ने खाद्य तेलों के मानक पैकिंग साइज लागू किए, पारदर्शिता और एक समान पैकेजिंग को बढ़ावा देना उद्देश्य। और मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में आज से अगले 4 दिनों के लिए आंधी के साथ बारिश और वज्रपात को लेकर जारी किया येलो अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मुझे सतना मध्य प्रदेश के कोई श्रीमान भरत गुप्ता करके हैं, माई गॉड पर एक मेल भेजा। रेलवे में जा रहे थे, उसका अपना अनुभव कहा। उन्होंने कहा साहब, मैं पहले भी रेलवे में जाता था, इस बार भी रेलवे में गया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि रेलवे में हर पैसेंजर, रेलवे में लोग खाते पीते रहते हैं, कागज वागज फेंकते रहते हैं। बोले कोई फेंकता नहीं था। इतना ही नहीं, ढूंढते थे भाई कहीं डिब्बे में डस्टबिन है क्या, हम कूड़ा कचरा उसमें डाले। और जब देखा कि भाई रेलवे में ये व्यवस्था तो नहीं है, तो उन्होंने खुद ने एक कोने में ही सब लोगों ने अपना कूड़ा कचरा इकट्ठा कर दिया। बोले ये मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव था। मैं भरत जी का आभारी हूँ कि उन्होंने ये जानकारी मुझे पहुंचाई। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सबसे ज्यादा प्रभाव छोटे छोटे बच्चों में हुआ है। सैकड़ों परिवार ये बात की चर्चा करते हैं कि हमारा बच्चा अभी कहीं चॉकलेट खाता है तो कागज तुरंत उठा लेता है। मैंने अभी एक सोशल मीडिया में किसी का देखा था, किसी ने लिखा था आज का मेरा हीरो, और आज का मेरा हीरो में उन्होंने किसी बच्चे की तस्वीर दी थी और कहा था कि वो बच्चा खुद इन दिनों कहीं पर भी कूड़ा कचरा है तो उठा लेता है, स्कूल जाता है तो उठा लेता है, अपने आप कर रहा है। आप देखिए, सबको लगने लगा है कि हमारा देश, हम गंदा नहीं करेंगे, हम गंदगी में इजाफा नहीं करेंगे, और जो भी करते हैं वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तुरंत कोई न कोई उनको टोकने वाला मिल जाता है। मैं इसे शुभ संकेत मानता हूँ।

0: आकाशवाणी
1: हमारे श्रोता सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 103 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोता मित्रों, कार्यक्रम में आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम आयुष्मान।
2: ये कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, जमुआर सासाराम के सौजन्य से।

0: 6 स्वागत करता है। ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं, आपके घर आंगन में लेकर आते हैं कि आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और जिंदगी का भरपूर मजा लेते रहें। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा करते हैं आपके इस कार्यक्रम में। बड़े हों, बुजुर्ग हों, बच्चे हों, महिलाएं हों, कोई भी हो, सारे लोगों की बात होती है, हेल्दी रहने की बात होती है। विशेषज्ञ डॉक्टर आते हैं, जानकारियां दिलवाते हैं। जी हाँ, ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के मातहत चलने वाला मेडिकल कॉलेज, नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जमुआर सासाराम रोहतास बिहार की तरफ से। बहुत ही उम्दा अस्पताल, 1200 बेड का ये अस्पताल है और NMCH अपने आप में पूरे इलाके के हेल्थ सेक्टर को संभाले है। जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, आप भी इसका लाभ उठा सकते हैं। आयुष्मान कार्ड पर भी यहां इलाज किया जाता है। ऐसे इस अस्पताल की एक विशेषता बताएं कि यहां से पैसे के लिए कोई वापस नहीं जाता। नोट करें नंबर कि अगर आपके पास कोई समस्या है, घर में, बाहर, उसके बाहर, उसके बाहर, यानी जहां भी समस्या है, इस फोन नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, पूछताछ कर सकते हैं और सही लगे तो जाकर अपना इलाज भी करवा सकते हैं। नंबर नोट करें, नंबर है, ध्यान से सुनिएगा, नंबर बता रहे हैं और संकोच नहीं करना है कि हम फोन करें कि नहीं करें। नंबर है 6206803040, 6206803040, ये नंबर है। आप दिल खोलकर, हाँ, कहीं से संकोच नहीं कीजिएगा कि हाँ क्या इस समय फोन करें कि कब फोन करें। नहीं नहीं, हमने आगे से आपके लिए ये नंबर दिया है, फोन करने के लिए नंबर दिया है, तो शर्माने की या सकुचाने की या संकोच करने की या आहा इफ बट ये सोचने की जरूरत नहीं है। आप स्वस्थ तंदुरुस्त रहें, हमारा पहला और अंतिम मकसद यही है। हम बच्चों की भी बात करते हैं, समय समय पर डॉक्टर रजत कालरा को भी लेकर आते हैं, क्योंकि बच्चों के इलाज के लिए, उसके हृदय के इलाज के लिए अगर कोई समस्या है बच्चे के हृदय में, तो नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में बहुत ही उम्दा व्यवस्था है। आज हमारे साथ रजत कालरा है, लेकिन हम कहेंगे कि वो खुद से अपना परिचय दें, क्योंकि बहुत सारे लोग, हाँ, इस कार्यक्रम से नए नए जुड़ रहे हैं, क्योंकि फोन कॉल्स बताते हैं, कोई कहता है पहली बार मैंने सुना, कोई दूसरी बार सुना, कोई कहता हमने आपको फोन किया था। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है और आप अपना परिचय पहले खुद से दीजिए पूरे बिहार और झारखंड के लोगों को।
1: सभी श्रोताओं को नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रजत कालरा है, मैं एक हार्ट सर्जन हूँ, यानी मैं हार्ट के ऑपरेशन करता हूँ, खासकर बच्चों को जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, उसका हम नारायण मेडिकल कॉलेज सासाराम में अब इलाज कर रहे हैं। मैंने अपनी ट्रेनिंग

0: में हार्ट की प्रॉब्लम होना अविश्वास था, खासकर गांव जैसे जगहों पे। पर अब धीरे धीरे खासकर डिजिटल मीडिया की प्रेजेंस की वजह से लोगों में अवेयरनेस तो आ रही है कि हाँ रेडियो के वैसे कि भाई ऐसी अवेयरनेस है कि बच्चों को भी हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है। बट अब मेन प्रॉब्लम है उसका डायग्नोसिस करना। तो अब धीरे धीरे जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ रही हैं, आउटरीच प्रोग्राम बढ़ रहे हैं, तो अब समय पे डायग्नोसिस हो पाता है जिससे उनको माता पिता को इतला दे पाए कि भाई इस वजह से बीमारी है। और फिर वो सोचते हैं, आगे हिम्मत करते हैं, कुछ इलाज कराते हैं, कुछ ओपिनियंस देते हैं। बट पहले और अब में ये फर्क है कि धीरे धीरे अवेयरनेस आ रही है।
1: क्या लोगों में विश्वास आ रहा है क्या?
0: देखिए, जैसे जैसे बच्चे ठीक होके जा रहे हैं, कम्युनिटी में कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। और पहले हमारे पास लोकल पेशेंट आते थे, अब सीतामढ़ी, मोतिहारी, झारखंड के अलग अलग इलाकों में, बनारस से, यहाँ तक कि दिल्ली एनसीआर से भी पेशेंट आ रहे हैं।
1: कार्यक्रम चल रहा है आयुष्मान, पाक्षिक स्वास्थ्य रेडियो पत्रिका आयुष्मान में राजेश हूँ, आप सबों के घर आंगन में, आपके आपके आपके आकाशवाणी केंद्र से ये कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है। सारे लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, खास करके जब बच्चों की बात आती है, आप बड़ों की भी बात आती है, तो हम चाहते हैं कि आप सेहतमंद रहें, जानकारियां आप तक भरपूर रहे कि कोई समस्या आए तो आप सही जगह जा सकें। एक फोन नंबर भी बताते हैं कि आप इसे डायल करके जानकारियां ले सकते हैं। नंबर है 6206803040, 6206803040, ये नंबर है। और ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जमुआर सासाराम रोहतास बिहार की तरफ से। डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, ये बच्चों के लिए जो हार्ट की समस्या या इस तरीके का जो आपने आपके नारायण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में जो चिकित्सा दी जाती है, अकेले या आपकी पूरी टीम है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए पूरे बिहार वालों को, क्योंकि विश्वास एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है हेल्थ सेक्टर में, खास करके और खास करके जब बच्चों की बात आती है।
0: कहते हैं ना, प्लेयर इज एज गुड एज अ टीम, है ना। तो ऐसे ही केवल डॉक्टर के अकेले होने से हार्ट का इलाज नहीं हो पाता, तो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, सुविधा चाहिए, टीम चाहिए, मैन पावर चाहिए, वो सब इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, तभी हम डिलीवर कर पा रहे हैं। और ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि पूरे देश भर में कुछ ही गिने चुने सेंटर हैं जहाँ पे बच्चों का इलाज सब्सिडाइज कॉस्ट या फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, खासकर जहाँ पे वजन का कोई क्राइटेरिया नहीं है। बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे 10 किलो के ऊपर के बच्चे, उन्हीं का इलाज हो सकता है, लेकिन हमारे सेंटर में हम वजन पे कोई मायने नहीं रहता, बच्चे की गंभीरता पे देखा जाता है, चाहे 2 किलो का हो, 2.5 किलो का हो, और अगर बहुत सीरियस है जिसको इलाज की जरूरत है, हम लोग वो भी आयुष्मान में फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं।
1: इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ, आपके जो साधन है, हाँ, उसमें आप कहाँ स्टैंड करते हैं, क्या क्या है यहाँ?
0: देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज यहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट्स है, मॉडलर ओटी है, आईसीयूज में हेपा फिल्टर लगे हुए हैं, मॉडलर आईसीयूज है, वेंटिलेटर अप टू डेट है, यानी सारा इक्विपमेंट जो भी एक एडवांस कार्डियक सेंटर में होना चाहिए, देश में नहीं विदेश में, वो भी हमारे पास। ये एक क्वार्टनरी केयर सेंटर है, यानी यहाँ पे सीरियस मरीजों का इलाज किया जाता है, तो बाय वर्चू ऑफ दैट हम 24 घंटे सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं।
1: अच्छा, एक बात डॉक्टर साहब ये बताइए कि बच्चों में हार्ट की समस्या कब आती है, क्या गर्भ में या गर्भ से बाहर जब बच्चा जन्म लेता है, और क्यों क्यों होता है ये, ऐसी तरीके की समस्या बच्चों में कैसे आती है?
0: जो बच्चों को हार्ट की प्रॉब्लम होती है, जब बच्चे पनप रहा होता है गर्भ में, तभी हो जाता है। तो ये पता तभी लगता है ऑफकोर्स जब बच्चा पैदा हो जाता है, लेकिन आजकल एंटीनेटल इकोज होते हैं, यानी जब बच्चा गर्भ में होता है तो इको के जरिए बच्चे के हार्ट की सेहत भी देखी जा सकती है, ताकि ये प्लान करके डिलीवर कर सके। अब दूसरा, ये होता क्यों है, तो हर 3 या 4 बच्चे, हर 1000 में से 3 या 4 बच्चों को ये कंजेनाइटल मैलफॉर्मेशन, यानी हार्ट के बनावट में दिक्कत आ जाती है। तो इसका कोई एक कारण नहीं है, मल्टीफैक्टोरियल बोलते हैं, तो इसीलिए ये केवल भारत में ही नहीं, विकसित देशों से भी हटाई नहीं जा सकती। तो वहां पे भी उतना ही इंसिडेंस है।

0: हमारे यहाँ है, तो कोई इसका एक विशेष कारण नहीं है। और ये इसलिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर बच्चे को हार्ट की प्रॉब्लम हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि माँ बाप में दोष ढूंढा जाए।
1: कोई कारण पता नहीं चल पाया है इसका, डॉक्टर साहब का कहना है। कार्यक्रम चल रहा है पाक्षिक स्वास्थ्य रेडियो पत्रिका आयुष्मान, बच्चों के हृदय रोग क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, क्या इलाज होता है, कार्डियक सर्जरी क्या होती है, सारी चीजों पर डॉक्टर रजत कालरा से बातचीत चल रही है। और ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं नारायण मेडिकल कॉलेज सासाराम रोहतास बिहार की तरफ से। 6206803040, 6206803040 ये नंबर है। इस पर आप डायल करके जानकारियां हेल्थ से संबंधित ले सकते हैं या नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में क्या क्या सेवाएं दी जाती है इसके विषय में भी जानकारियां ली जा सकती है। वैसे हम आपको बताएं कि आयुष्मान कार्ड से यहां इलाज होता है। डॉक्टर कालरा, एक छोटा सा सवाल, क्या मैल न्यूट्रिशन भी इसका कारण हो सकता है, क्या हम ढूंढ सकते हैं क्या?
0: देखिए, मैल न्यूट्रिशन जहां तक बोला जाए, जैसे फोलिक एसिड डेफिशिएंसी है उसकी वजह से कुछ हद तक हो सकता है, बट बहुत सारे समाज में लोग हैं जो मेल नरिश नहीं है, खासकर माता पिता, हाँ फॉरेन में भी होता है, तो फिर वहां पे क्यों हो रहा है ये, राइट? तो कहीं पे मल्टीफैक्टोरियल बोलते हैं, थोड़ा सा जेनेटिक्स, थोड़ा सा खान पान, थोड़ा सा रहन सहन, तो मल्टीपल चीजें बनकर ये कॉज करती है। तो किसी एक चीज को एलिमिनेट कर दें तो ऐसा समझ में नहीं आ रहा जिससे इसका इंसिडेंस कम कर सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, कुछ दवाइयां जैसे वॉरफरिन हो गया, लिथियम हो गया, इनको अवॉइड करना चाहिए, जिनकी वजह से पता है हमको कि हार्ट के बनावट में प्रॉब्लम हो सकता है। बट बहुत सारे कारण हैं, सबको नहीं, एक पिन पॉइंट से नहीं बोल सकते कि इसकी वजह से ही हार्ट की प्रॉब्लम।
1: अच्छा, एक बात डॉक्टर रजत कालरा, फटाफट, हाँ, लोगों तक जानकारियां पहुंचाना बहुत जरूरी है, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं?
0: अभी हम लोग एक तो आउटरीच ओपीडीज कर रहे हैं, खासकर सीतामढ़ी, मोतिहारी, फिर जमुई, इधर देवघर, बनारस, जौनपुर, तो इन जगहों पे जाकर कम्युनिटी में लेवल पे जाकर स्क्रीनिंग करके वो कर रहे हैं। फिर दूसरा ये है कि जगह जगह एडवर्टाइजमेंट्स यानी पोस्टर्स लगा रहे हैं ताकि लोगों को पता लगे कि यहाँ पे ये सुविधा उपलब्ध है। और तीसरा है कि ऑडियो मीडिया जैसे रेडियो या प्रिंट मीडिया, अखबार में एडवर्टाइजमेंट्स, इनके जरिए कोशिश कर रहे हैं। बट आई थिंक बेस्ट इज कम्युनिटी मैसेज, जितने बच्चे ठीक होकर जाएंगे वो एक दूसरे को बताएंगे, माउथ पब्लिसिटी, उसी से ही कॉन्फिडेंस। और
1: बहुत अच्छी पहल है डॉक्टर रजत कालरा, आप ओपीडीज में जा रहे हैं, अलग अलग शहरों में जाकर बता रहे हैं एडवर्टीजमेंट, और इस रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से भी हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, हमारी रीच करोड़ों लोगों तक होती है ना, जिसमें हम बताते हैं कि गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के तहत जो नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल है क्या क्या सुविधाएं दे रहा है, जन सेवा में खड़ा है। बहरहाल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारे सवाल शेष रह गए हैं, अगले एपिसोड में हम आपसे बातचीत कर जानेंगे। पाक्षिक स्वास्थ्य रेडियो पत्रिका में अभी बातचीत चल रही थी डॉक्टर रजत कालरा से, बच्चों के डॉक्टर हैं। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि चिकित्सा का जो स्थान है ना, वो भरोसा है, और आपका भरोसा हमें मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जमुआर सासाराम रोहतास में, जी हाँ, आयुष्मान कार्ड से इलाज होता है, पैसे के चलते कोई भी इंसान वापस नहीं लौटता। नंबर नोट करें, 6206803040, 6206803040 ये नंबर है। तो बस आज हमें, यानी अपने दोस्त राजेश को दीजिए इजाजत, अगले सप्ताह नहीं 15 दिनों के बाद फिर से मुलाकात होगी, क्योंकि ये है पाक्षिक स्वास्थ्य रेडियो पत्रिका आयुष्मान। हाँ, संकोच नहीं कीजिएगा, चलें, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, और जिंदगी का भरपूर मजा लेते रहिए।
2: आयुष्मान,
1: नमस्कार।
2: ये कार्यक्रम हम लेकर आ रहे थे नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, जमुआर सासाराम के सौजन्य।
3: हमारे श्रोता सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम आयुष्मान।

0: हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 103 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम जोहार पलामू।
1: पलामू।

0: प्रस्तुत है आज का चिंतन। एक बार एक संत ने अपने शिष्यों से पूछा, हम क्रोध में चिल्लाते क्यों हैं? जब हम खिन्न होते हैं तो एक दूसरे पर चिल्लाते क्यों हैं? शिष्यों ने कुछ समय विचार किया और उनमें से एक शिष्य ने कहा, हम अपनी शांति खो देते हैं इसलिए चिल्लाते हैं। संत ने पूछा, पर जब दूसरा व्यक्ति आपके पास ही खड़ा हो तब हम क्यों चिल्लाते हैं? क्या यह संभव नहीं कि हम उस व्यक्ति से नरम आवाज में बातें करें? हम एक दूसरे पर क्यों चिल्लाते हैं जब हम क्रोधित होते हैं? शिष्यों ने कई जवाब दिए, पर किसी भी जवाब से संत संतुष्ट ना दिखाई दिए। अंत में उन्होंने कहा, जब दो व्यक्ति एक दूसरे पर क्रोधित हों तो उनके हृदय बहुत दूर हो जाते हैं। इस दूरी को तय करने हेतु उन्हें चिल्लाना होता है ताकि वे एक दूसरे को सुन सकें। वो जितना अधिक क्रोधित होते हैं उन्हें अपने हृदय की दूरी तय करने के लिए उतना ही चिल्लाना पड़ता है। फिर संत ने पूछा, क्या होता है जब दो लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं? वे सब दूसरे पर चिल्लाते नहीं बल्कि सौम्यता से बात करते हैं, क्योंकि उनका हृदय बहुत करीब होता है, उनके बीच की दूरी बहुत कम हो जाती है। संत ने आगे कहा, जब वे लोग एक दूसरे से और ज्यादा प्रेम करते हैं तब क्या होता है? वे कुछ बोलते नहीं, बस आपस में फुसफुसाते हैं और एक दूसरे के हृदय के और करीब आते हैं। और एक समय ऐसा भी आता है जब उन्हें फुसफुसाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, बस एक दूसरे को देखते हैं और मन की बात एक दूसरे से कर लेते हैं। इस तरह लोग करीब होते हैं जब वे एक दूसरे से प्रेम करते हैं। जब आप किसी से बहस करते हैं तो ध्यान रखें कि आपका हृदय उनसे दूर ना हो जाए, वरना कभी ऐसा दिन भी आ जाएगा कि दूरी इतनी बढ़ जाएगी कि आपको पास आने का रास्ता नहीं मिलेगा। क्रोध से हमारे साथ साथ हमारे आसपास के लोगों के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को खतरा हो जाता है। क्रोध पर विजय पाने का केवल एक रास्ता है और वो है कि हम अपने को नियंत्रित करने की प्रवृत्ति को अपनाएं। चिंतन के इन क्षणों में हम प्रार्थना करें कि हम क्रोध का ग्रास ना बने तथा सभी जीवों से मित्रवत संबंध रखते हुए उन्हें परमात्मा के अंश के रूप में देख सकें।
1: जोहार पलामू।

श्रोता मित्रों, कार्यक्रम में अब आइए हम सुनते हैं कुमार सानू एवं अलका याग्निक की आवाज़ों में आनंद बख्शी का लिखा गीत, संगीत अनु मल्लिक का।

0: हम पुनः स्वागत करते हैं आपका कार्यक्रम जोहार पलामू में। कार्यक्रम में हम बातें करेंगे पर्यावरण संरक्षण की। पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार या संस्थाओं का काम नहीं है, बल्कि यह हम सभी की सामूहिक और व्यक्तिगत जिम्मेवारी है। छोटे छोटे प्रयासों से हम अपने भविष्य और आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित कर सकते हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए अपने दैनिक जीवन में कुछ आसान से तरीकों को अपनाना अति आवश्यक है। जैसे हम वृक्षारोपण करें, अपने आसपास अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, हरियाली प्रदूषण को कम करने का सबसे प्राकृतिक साधन है। इसके साथ ही हम जल को बचाएं, पानी की बर्बादी को हम रोकें। कोई भी ऐसा कार्य जल से संबंधित हम जो कर रहे हैं उसमें जल की बचत करें। बेकार के जल को हम ना बहाएं। प्लास्टिक का बहिष्कार अति आवश्यक है श्रोता बंधु। सिंगल यूज प्लास्टिक के बजाय कपड़े या जूट के थैलों का उपयोग हम कर सकते हैं। ऊर्जा को बचाइए। जब आप कमरे में ना हो तो पंखे और बल्ब बंद कर दें, उसे बुझा दें बल्ब को। आप एलईडी बल्बों का उपयोग करके बिजली की बचत आप करें। कचरा प्रबंधन अति आवश्यक है। कचरे को हमेशा कूड़ेदान में डालें। गीले और सूखे कचरे को अलग करें और रीसाइक्लिंग को बढ़ावा दें। जी हाँ, और इसी क्रम में हम आइए सुनते हैं पर्यावरण संरक्षण विषय पर वन संरक्षण पदाधिकारी पलामू जिला सत्यम कुमार से की गई बातचीत। डाल्टनगंज वन परमंडल पदाधिकारी श्री सत्यम कुमार जी, सर नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: तो पर्यावरण का जो सुरक्षा है, संवर्धन है, वो एक सामूहिक जिम्मेदारी होती है, क्योंकि हमारे संविधान के जो मौलिक अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट है, उसके भी आर्टिकल 21 में भी हमारा पर्यावरण है। उसके बाद अगर हम फंडामेंटल ड्यूटीज में भी जाएंगे तो भी हमारा जो 51A में भी हम लोगों को पर्यावरण के बारे में कुछ कर्तव्य हम लोग को दिया गया है कि हम लोग को अच्छा रखना है वातावरण को। और दूसरा जो संविधान में नीति निर्देशक तत्व है, जिसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोलते हैं, जो हमारे पॉलिसी मेकर जो सांसद हैं, विधायक हैं, जो नियम बनाते हैं देश को गवर्न करने के लिए, तो उनको भी एक संवैधानिक दायित्व दिया गया है कि आप क्लीन इन्वायरमेंट के लिए कुछ नियम कानून बनाइए। और समय समय पर हमारा जो लेजिस्लेटिव बॉडी है, वो लोग ईपी एक्ट, एयर एक्ट, वाटर एक्ट, या बहुत सारा हमारा बन ही लीजिएगा तो IFA है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, इस तरह के बहुत सारा लेजिस्लेशन को भी किया है। तो हम नटसेल में अगर सबको देखें तो उसको देखने से लगता है कि पर्यावरण एक सामुदायिक जिम्मेदारी है। आप गांव के आम किसान, प्रधान से लेके हमारे देश के प्रधानमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, सबको एक सामूहिक जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि पर्यावरण एक ऐसा विषय है जो किसी एक डिपार्टमेंट या एक आदमी से
0: जुड़ा हुआ नहीं है।
2: हाँ, स्वच्छ नहीं हो सकता है, अच्छा नहीं रह सकता।
0: जी जी, सभी से है।
2: हाँ, सभी से जुड़ा इन्वायरमेंट जो है, पर्यावरण को ही ले तो हमारा आवरण है, उसमें तो सब है, जीव है, जंतु है, घास है, पेड़ है, पशु पक्षी है, हम लोग हैं। हम लोग तो एक मतलब एक क्रिएचर भी हम लोग हैं इस यूनिवर्स के। इकोसिस्टम हमारा ठीक नहीं रहेगा, हमारा जो फूड चेन, फूड वेब जो होता है कि भाई एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। घास को ग्रास हॉपर खाएगा, ग्रास हॉपर को और कोई बड़ा जानवर खाएगा, फिर बड़ा जानवर का जब डेथ हो जाएगा तो उसका डीके के लिए एक बैक्टीरिया है, फंगाई है, तो जो छोटा से छोटा जो हमारे यहाँ जो जीव है
0: जी।
2: उससे लेके जो सबसे विशालकाय प्राणी है
0: उनका
2: एक इस हमारे इकोसिस्टम में इम्पोर्टेंस है। अगर कि कोई एक फूड चैन में मिसिंग हो जाएगा तो हमारा जो एनवायरमेंटल बैलेंस है वो ख़त्म हो जाएगा
0: जी।
2: तो इसलिए हम लोग को हर जीव जंतु और जंगल के बारे में सोचना है
0: जी। और कौन कौन से कार्य किए गए?
2: उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो कोयल नदी है उसका हम लोग सफाई किए, जो गार्बेज वगैरह था वो भी एक मतलब जैसे आप ये बोल सकते हैं, आप मीडिया से तो हमसे पूछ सकते हैं कि एक दिन के सफाई से क्या पर्यावरण
0: बिल्कुल
2: स्वस्थ हो गया,
0: यही हम जानना चाह रहे थे।
2: हाँ, तो
0: लोग एक दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं
2: तो उस वही हमको कहना है। जैसे हम लोग तो पर्यावरण के लिए सालों भर काम करते ही रहते हैं, पौधा लगाते हैं, अभी जैसे बरसात हो जाएगा पौधा लगाएंगे, फिर पौधा लगाने के बाद उसका होइंग ब्रीडिंग करेंगे, फिर सेकेंड होइंग ब्रीडिंग करेंगे
0: जी।
2: उसके बाद अगले साल हम क्या करेंगे उसका APO बनाएंगे, उसके बाद फिर जब हम लोग गाँव जाते हैं तो गाँव के लोगों का लाइवलीहुड कैसे अच्छा हो, उसका आर्थिक उन्नयन कैसा हो, तो उनसे फिर हम लोग बातचीत करते हैं। उसके अलावा बहुत सारा डेवलपमेंटल रोल भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इनडायरेक्टली दिया गया है। जैसे मान लीजिए कहीं जंगल में रोड बनना है, नदी है, नाला है, बिजली का लाइन जाना है, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई जाना है, तो उसमें भी हम लोगों का समय जाता है। या फिर दूसरा, वन विभाग के पास एक और जिम्मेदारी है जिसके बारे में मतलब आम लोगों को बहुत कम ही पता है कि एक DFO को एक क्वासी जुडिशियल जिम्मेदारी भी दी गई है। और हमारे जो रेंज ऑफिसर एंड बिलो को है, बिलो रेंज ऑफिसर एंड बिलो जितने भी पदाधिकारी या कर्मी हैं उनको एक और जिम्मेदारी पुलिसिंग की भी दी गई है। कहीं फॉरेस्ट में जंगल कट जाए तो उसको रक्षा करना, उसको ऑफेंस करना, बनवाद दायर करना, उसको फिर जुडिशियरी के सामने साक्ष्य के साथ प्रस्तुत करना
0: जी।
2: तो हमारा जो डे टू डे फंक्शनिंग है तो उसमें हर तरह का जिम्मेदारी हमारे पास

0: है, पर्यावरण का रक्षा भी करना है। अगर कोई कुछ पर्यावरण के अगेंस्ट जो काम कर दिया तो उनको पनिश भी कराना है, लेकिन हम लोग जो देश का जो सबसे पुअरेस्ट ऑफ पुअर है, हम लोग उसके साथ काम करते हैं। ठीक है, तो हम लोग का ये ध्येय नहीं होता है कि हम लोग लोगों को जो है, मतलब जो हमारा प्यूनिटिव आस्पेक्ट है उससे हम चीज़ों को अच्छा रखें। हमारा होता है जन सहभागिता और एडुकेशन। तो आज जो आप देखे होंगे हम लोग रिवर क्लीनिंग किए, तो वो भी एक ये था, सिम्बोलिज्म ही था कि जैसे वहाँ गए हम लोग चुने
1: जी।
0: तो कम से कम वहाँ पे जितना दुकानदार है ठाली रिक्शा वाला, वो लोग एक डे टू डे बेसिस पे प्लास्टिक वेस्ट को वहाँ फेंकते हैं नदी में, एटलीस्ट वो हम श्योर हैं कि आज से 15-20 दिन तो कम से कम वो नहीं फेंकेंगे, मोरल प्रेशर उस पर होगा। फिर उसके बाद और कोई इवेंट आएगा, वन महोत्सव आएगा, उसमें भी हम लोग प्रेरित करेंगे, फिर कुछ नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी प्रेरित करेंगे। तो हम लोग लोगों के टच में ही रहते हैं। और हम लोग, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर क्लाइमेट चेंज होगा तो सबसे ज़्यादा उसका प्रभाव जो सबसे निचले पायदान पे समाज में उन पे पड़ेगा। अब फूड प्रोडक्टिविटी कम होगा तो फूड ग्रेन महंगा होगा, अनाज महंगा होगा, तो सबसे पहले अगर फूड स्कार्सिटी होगा तो उस परचेजिंग पावर जिसका कम है उन्हीं को दिक्कत होगा। तो हम लोग को पर्यावरण ये सोचना होगा कि हम लोग को जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसका इम्पैक्ट पुअरेस्ट ऑफ पुअर पे है। और अगर हम लोग जिस देश में रह रहे हैं